काम ईश्वर को नाम फल होने काम सब जन भक्त जन ने हो भजू भनी देखने आखिरी का पलना छेव मची मंत्री नारायण।

कथैवराहर्यर स्वपरे बाचिसि देखि सतमिता कैसा त्रोधयात्रा उदा।

के गरी कना हे राम हे राम हे राम पांच पांडव भाई के भय भने देखी उतापटी परमात्मा 36 वर्ष पछाड़ी राज्य उनीले 36 वर्ष पछाड़ी यादवहरू जो दीप राकाश पाले सारा छिए भए प्रभास तिरामा देखे जसै कृष्णले देखबाने मनमा कुल छिए भयो जानु पर्यो लौ भनी स्वर्गारोहण होई भविष्यनु पनि भयो दाजै बलराम पनि नारायण।

0: सामुदायिक पहुँच का लागि संचार रेडियो सैलुङ सामुदायिक एफएम 92.7 मेगाहर्ज
1: अल्पाइन पब्लिक स्कूल सैलुङ समाचारको सहयात्री।

आर्मी नंबर चलाई हाथा को सारे लाई हाथा को सारे लाई तो बेला चीनी को ची

मेरे प्यारा ले नाता समझे पानी नाता समझे पाने मैं समझूला दिन को दिन छत पानी।

0: दिल बोले तो
1: हार्ट हार्ट
2: हमारा यार सौदा सौदा
0: ओहो
3: दोनों डील करते
0: टाइट वेरी टाइट।

0: पहनेंगे जाती मैडम डिस्को, वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉर्ट्स भी दे दो इसको, इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए
1: लाउड,
0: ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता डंका
1: क्राउड,
0: लुधियाने से आई लड़की यूनिवर्सिटी पढ़ती है, कहती तो है स्टूडेंट है बट आई डाउट।

मकई लायकानी माई गाये पाने सके ना माई ले बेरे सानो फुलफुलो तोरी एरा ना बाईनी छोरी सके ना माई ले बेरे सानो पारी बड़ा को तो मंचे आयो के चाय माल माता यारी रामा ढलको यो जमाना के चाय माल माता

नमस्कार रेडियो सैलम सामुदायिक एफएम 92.7 MHz म पति प्रसाद सापकोटा आज विक्रम संवत 2083 साल आषाढ़ कृष्ण पक्ष सन 2026 जुलाई 6 तारीख आषाढ़ 22 गते सोमवार षष्ठी तिथि अब स्तुति करूं आयु द्रोण कुमार कैसरिया हो साक्षेण कल्पय भरी।

बसाई। सुग्रीव मंत्री लेता प्रभु जी को दिल खुश गराए तसाई। हे राम रावण लाई मारी सहजई सीता जी लाई यहाँ।

मेरो नाम सूर्यबार थापा, भिनपा तीन तारथलीबाट म हनुमान चालिसा रेकर्ड गर्न चाहन्छु। श्री गुरु चरण सरोज रज निजमनम गुरु सुधारी वर्ण रघुवर विमल दस जो दायको फलचारी बुद्धिहीन दोन जानकी सुनिर पवन कुमार बलबुद्धि विद्या देहु मई हरहु कलेश विकार। ओम जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपिश तिम्रो उजागर, रामदूत अद्वैत बलधाम, अञ्जनी पुत्र पवन सुत नाम, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार्य स्मृति संगी, कंचन वर्ण विरास वेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा, हाथ भर जाओ ध्वज विराजई, कांधे मुझे जनेव साजई, शंकर सुमन केसर नंदन, तेज प्रताप महाजग बंदन, विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर, पर्व चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरी से दिखवाया, विकट रूप बदल लंगा दरवाया, हेम रूप धरी असुर संहारी, रामचंद्र के काज संहारी, लाए सजीवन लखन जी आये, श्री रघुवीर हर्षियुर लाए, रघुपति कीनी बहुत बढ़ाई, तुम मम प्रिय भरतम भाई, सहज बदन तुम्हारा जस गावे, अजक श्रीपति कंठ लगावे, सनकादि ब्रह्मादि मुनिषा, नारद सारद सहित ऐसा, हेम कुबेर दीपाल जहाते, कवि गोविंद कैसे के कहते, तुम उपकार सुग्रीव किना, राम मिलाए राजपद दिना, तुम्हारो मंत्र भी विषण मान, लंकेश्वर भय सब जग जान, युग सहस्र योजन पर भानु, लील्योताई मधु फल जानु, प्रभु मुंद्री का मेली मुखमाई, जल्दी लागी गए अतर जनाई, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते, राम द्वारे तुम रखवारे, वतन आज्ञा बिना पैसारे, सब सुखलाई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षे काम को डरना, आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हागते कापे, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हर सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कमर वचन ध्यान जलावे, सब पर राम तब श्री राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, अवरो मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारो जुग पड़ताल तुम्हारा, है पर्ची जगदेव जियारा, साधु संत के तुम रखवारी, असुर निकंदन राम दुलारी, अष्ट सिद्धि नमनिधि के दाता, अस्वर दिन जान की माता, राम रसायन तुम्हारी पासा, सदा रो रघुपति दासा, तुम्हारी भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त खाई, और देवता चिदन धरई, हनुमत से सर्व सु करई, संकट कटई मिर सब पीरा, जो सुमिरई हनुमत बलबीरा, जय जय जय हनुमान गोसाई, कृपा कर हूँ गुरुदेव की नाई, जो सतबार पाठ कर कोई, छुटी बंदी माँ सुख हुई, जो ये पड़े हनुमान चालीसा, हो ये सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सनाहरी चेरा, किजनाथ हृदय महडेरा। ओम पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसवंश रूप, सियावर रामचंद्र शंकर जी बाजा, जय हनुमान, जय बजरंगबली।